मोहे अनहत बैनु हर चरण सूर गोपाल प्रभ भगत वास दयालु हार निमख लहे न पेव नित करहे मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवारु हर जाकी महा बिखड़ी सारु ताकी गत ताकी मित न जन कोए जल थल महियल सोए कार बंदना लख बार थक परयो प्रभ दरबार प्रभ करहु साधु तूर मां नानक मनसा पूर बिलावल महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परयो द्वार बह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दयाल हो लड़ लाई नानका नाम त्याय दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी दीना नाथ दयाल जांचो संतरवाल रहाउ संसार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभ जी ले हर नाम अपना देह प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोह बांधी देह बेन भजन होवत खे जमदूत ब महापयानु चित गुप्त करम जान दिन रैन साख सुनाई नानका हर सरनाई पै भंजना मुरारु कर दया पत उदारु मेरे दोख गने न जाहि हार बिना कतह समाहि गह ओट चित विनाथ नानका दे रखहासु हर गुण निधे गोपाल सर्व कट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोबंद पूर्ण आस एक निमख रहन न जाय बड़ पाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चरण चंद चकोर जो मीन जल स्यों हेत आल कमल पिन न पेत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरण पतार पुराण ज्यों लोभी है तन दान ज्यों दूध जलय असंजोग ज्यों महा खुद्यार्थ भोग ज्यों मात पूत हित हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरतन संग मैंगल है ना कम बंद ते ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर बिसर न जाई हर नाम यही मन लाई हर नानक यही मन लाई करंक न दैनेह चातरक चाहत मेह जन जीवन सतसंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाई सुन लिख ले दे सो सर्ब फाल हर ले कुल संभूह करत उदारु संसार उतरस पारु हर चरण बोहित नाताही मिल साध संग जस गाही हर पैज रखै मुरारु हर नानक शरण द्वारु बिलावल महला पहला थिती कर दसवां जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात न जाला अगम अगोचर रूप न रेखिया खोजत खोजत कट कट देखिया जो देख दिखावै तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम गत पा परम पद पाई क्या जप जप बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दिसै रहो दूजै पाए लगै पछताणे जमदर बाधे आवण जाने क्या लै आवे क्या ले जाहे सरजम काल से चोटा खाए बिन गुर शब्द न छूट सकोए पाखंड कीने मुक्त न होए आपे सच की आसा कर जोड़ अंडज फोड़।

सदगुरु प्रसाद आद तवार आद पुरख है सोई आपे वरत वरण कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सोई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई हृदय जपनी जपो गुण तासा हर अगमा गोचर अपरंपर स्वामी जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाउ सोमवार सच रहा समाई तिसकी कीमत कही न जाए आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लै पाए अगम गोचर लख्या न जाए गुर का शब्द हर रहा समाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदै लाया आप बुझाए सोई बूझै गुर का शब्द दर कर सूझै प्रेम भगत करे लिवलाई हो मैं ममता शब्द जलाए बुद्ध वार आपे बुद्ध सार गुरमुख करनी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे महोमय मलक होए दर सच्चा सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार जो देवै तिस कौ बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो उरतार देवन हारे कौ जयकार वीरवार वीर परम पुलाए प्रेम भूत सब दूजै लाए प्रेत भूत सब दूजै लाए आप पाए कर वेखै एवेका सबना करते तेरी टेका जीव जंत तेरी शरणाई सो मिलै जिस लह मलाई शुक्रवार प्रभ रह समाई आप पाई सब कीमत पाई गुरमुख हो वैसो करे विचार सच संजम करनी है कार वर्त नेम नेता प्रत पूजा

संत। मेरा हर प्रभु रावण आईया हों मैं बिख जागे राम। गुरमत आप मिटाया हार हार लिव जागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभु पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभु

राम। हर प्रभ हर मन पाया, हर नाम बधाई राम। गुरपूरै प्रभ पाया, हर हर लिवलाई राम। अग्ञान अंधेरा कटिया, जोत प्रगटे आई राम। जन नानक नाम आधार है, हर नाम समाई राम। धन हर प्रभ प्यारे रावे राविया, जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाईया, जाओ बिलक मसाई राम। गुरपूरै हर मिलया, हर रस अगाई राम। जन नानक नाम विकसया, हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मगद मिलाया, हर कृपा धारी राम। धन धन गुरु साबास है, जिन हम मैं मारी राम। जिन वडभागियां वडभाग है, हर हर उर तारी राम। जन नानक नाम सलाहि तू, नामे बलहारी राम। बिलावल महला पंजवां शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अवनासी वर सुनया, मन उपजा चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे भागे, काब मिलिए पूर्ण पते। सहजे समाइया गोविंद पाइया, देह सखिए मोहे मते। जिन रैन ठांडी करो सेवा, प्रभ कवन जुगति पाया। बिनवंत नानक करो कृपा, लेह मोह लड़लाया। भया उस महड़ा हर रतन बसाह राम। खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम। मिले संत प्यारे दया तारे, कथा कथ विचारु। एक चित एक मन त्याई स्वामी, लाए प्रीत प्यारू। कर जोड़ प्रभ पह कर बिनंती, मिले हर जस लाहा। बिनवंत नानक दास तेरा, मेरा प्रभ आगम था। साहा टल गणया पूर्ण संजोग राम। सुख समूह पया गया अभिजोग राम। मिल संत आई प्रभ ते आई, बने अचरज जानिया। मिल कतर हुई सहज टोए, मान प्रीत उपजी मानिया। मिल जोत ज्योति ओत पोती, हर नाम सब रस भोगो। बिनवंत नानक सब संत मेली, प्रभ करण कारण जोगो। पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम। प्रभ कार आड़ा गुर चरणी लागी राम। गुर चरण लागी सहज जागी, सगले इच्छा पुनिया। मेरी आस पूरी संत धूरी, हर मिले कंत बिछुनिया। आनंद आनंदन वजह बाजी, अहं मत मन की त्यागी। बिनवंत नानक शरण स्वामी, संत संग लिव लागी। बिलावल महला पंजवां, भाग सुलखणा हर कंत हमारा राम। अनहद बजतरा तिस धुन दरबारा राम। आनंद आनंदन वजह बाजी, दिन सरैण उमाह। तह रोग सोग ना दुख व्यापै, जन्म मरण ना ताह। रिद सिद्ध सुधारा से अमृत, भगत भरे भंडारा। बिनवंत नानक बलिहार वन्या, पार ब्रह्म प्राण अधारा।

सदगुरु प्रसाद। सखी आओ सखी बस आओ सखी, असी पिरका मंगल गाव हां। तजमान सखी तजमान सखी, मत अपने प्रीतम भावां। तजमान मोह विकार दूजा, सेव एक निरंजन। लग चरण शरण दयाल प्रीतम, सगल दुरत विखंडन। होए दास दासी दाजो दासी, बहुड़ बिदीना तावां। नानक पयम पै करहु कृपा, ताम मंगल गावां। अमृत परै का नाम है, मैं अंधली टोहनी। ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी महाबचित्र चंचल। अनक पाव दिखावे, होए ठीठ मीठी मन लागे। नाम लैण न आवे, गृह बने तीरे। बन बरत पूजा बाट घाट जोहनी, नानक पयम पै दया दारू। मैं नाम अंधले टोहनी, मोहि अनाथ प्रनाथ। ज्यों ज्यों जानो त्यों रखो, चतराई मोहि नाही रिजावों। कह मुखों नह चतर सुगुण सुजान, बेती मोहि निर्गुण गुण नहीं। न रूप धूप न नैन बंके, जय पावे तै रख तुही। जय जय जय अम्बै सगल जा कहो, करुणा पत गात किन लखो। नानक पयम पै सेज सेवक, ज्यों जान त्यों मोहे रखो। मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरै। मोहे चातरक तुम बूंद, तृपतो मुख परै। मुख परै हरे प्यास मेरी, जी ही आ प्राण पति। लाडले लाड लड़ाई, सब मैल सब मह मैल हमारी। होए गते चेत चीत चित बहु मिट अंधारी, ज्यों ता आस चक भी दिन चरै। नानक पयम पै प्रै संग से मेली बिशर। नानक पयम पै प्रै संग मेली, मछली नीर ना विसरै। तन तन हमारे पाग, कर आया फिर मेरा। सूहे बंक द्वार सगला बन हरा, हर हरा स्वामी सुखा गामी। आनंद मंगल रस खणा, नवल नव तरना हंबाला। कवन रसना गुण पणा, मेरी सेज सोही देख मोही। सगल सहसा दुखारा, नानक पयम पै मेरी आस पूरी। मिले स्वामी परंपरा, बिलावल महला पंजवा। शांत मंगल एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्लोक। सुंदर सांत दयाल प्रभु, सर्व सुखान दपियो। सुख सागर प्रभु में भेटे आए, नानक सुखी हो ते जियो। शांत सुख सागर प्रभु पाई है, जब हो वह पागो राम। मानन मान बन जाई है, हर चरणी लागो राम। छोड़ सियाण बचातरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पौ सरनाई, राम राय थिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज कतल जला गी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज न आवै अज्ञान मती, दुर्जन बरमाइए राम। पातत पावन प्रभु त्याग, करे कहो कात ठहराइए राम। नानक भगत बशल भगत पाओ, कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरै बाल, गाइए दो चारण राम। रसना राम प्रभ भगत बशल, नह सेवई काया काक। ग्रसना राम।

संगे राम एक चल प्रभु ना विसरै जिन सब कछ दीना राम बडभागी में लावड़ा गुरमुख परचीना राम बहां पकड़ तब ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक।

राम नानक उदरे जप हरे सब हूं का स्वामी राम रास पिन अड़े अपने राम संगे से लोइन नी के राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रास हर पाया बिख्या रस भी के राम नानक जल जल समाया ज्योति ज्योत मी के राम बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गावया कर दीन बिला कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मनिया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर गुर लिबलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख घड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही की जीए जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोने जा लागै सहि ध्यान राग नाद छोड़ महर सेवियै तांदर गै पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुदो पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन सरात अंत लय छुड़ाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजै पाए बिलावल न हो बई मन मुख थाए न पाई पाखंड भगत न हो बई पार ब्रह्म न पाया जाए मन हठ कर्म कमावने थाए न कोई पाए नानक गुरमुख माप विचारी है बिचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वसया मन आए जमण मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाई महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सत्यों लबलाई जन्म मरण दो कटी है सचे रहे समाई सदा बिलावल आनंद है जे चलें सतगुर पाए सतसंगति बह भाव कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच आप हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वास भगतां कै आनंद कर हर भगतां का मेली सर्व सकाओ निसल जन टंग तार हार सबना का है खसम सो भगत जान चित कर तुद अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै चाड़ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

मूर्ख मुख दा जन्म भया, प्रणवत नानक दिन की शरणा, जन तू नाही विसरया। आस्था महला पंजवा। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। अबर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म ब्रथा जात रंग माया कह राउ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबहो। आप हाथ

आओ आज संगरे आए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की ही रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निभरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सुजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहि रखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन

प्रवतरा काल पाही गर्भिषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब दी अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा चंद्रालम जानत भेद भेद अरयालम।

महामूढ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेति, वर्णत भिन भिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज झेरज से दज कीनी, उत्पुज खान बहोर रज दीनी। कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संगरो। दोष जिते उठ बत पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख वह मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट रष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहन हरे हो, ताके ताप तनक मो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उभारा। जैन नार नाम तिहारु कहा, दारिद दोष्ट दोख तेरा। खड़ग के

हेमत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो सरी असबाउन कृपा तुमरी कारु मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा।

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज से ती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तां गावो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला।

सबसे अधारू। जे को खावे जे को पुंचै किसका हुए उधारू, इह वास्तव तजी न जाई नित नित रख और धारू।

साध संग मिल त्याई है, मन बांशत फल पाए, गुर पूरा हृदय त्याए। गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीव है परमानंदा, जन नानक नाम ते आया, प्रभु।

कुछ भी नहीं है। तो मेरी समझ तो बने, समझ समझ के मैं ये समझ लिया, मेरी समझ दे दे लगने पास हृदय याद कर याद पहुंच जाता। पर एक फकीर के सड़क के कह रहा अमीर खुसरो, हे प्रभु ये समझ आ गया, समझ नहीं पहुंच सकती पर करा की याद भी नहीं पहुंच। अब तो याद दे डॉक्टर गांधी भी पहुंच रहे, दोस्तों ने कितने दूर बसाई है बस्ती, आए मेरे खुदा कितना दूर है, तेरी याद नहीं पहुंच, मेरी समझ नहीं पहुंच। क्यों नहीं पहुंचती? गुरबाणी इसमें दार्शनिक ढंग जिन्हें बयान कर रही है, मैं कोशिश कर रहा है कि दोपहर का वक्त इस तरह की कथा आँदी है वर्त वेले, ये भी मैं अर्ज कर रहा, दिल दिमाग ताजा होंगे थोड़ा, सुनने को भी हिलता राजी होंगे, सुनाने भी दिल दिमाग राजी, संबंध और नहीं होता है। हूं जोड़ा सुना तो सुना हो इंज हों जिमें दो मन का पत्थर भी सिर पर हो कोई पहाड़ दे चढ़े, इस तरह अमृत वेले इंज हों जिमें मैदान में बंदा दौड़िया जाए दौड़े है मुक्तसर में कर। दूरी की है बहुत नेड़े, बहुत नेड़े, फिर गोली की है मन दूर है, मन दूर है, इस करके परमात्मा दूर प्रतीत होता है। इसलिए आपको देर में कह रहे हैं मन दूर है, पहले परमात्मा को समझिए, अकाल है काल विच नहीं है, समय विच नहीं है, है जो घड़ी समा दसदी पी है थोड़े हाथ के उत्ते जो घड़ियां बनिया ने समा दसदिया ने, परमात्मा ने साडे अंदर एक घड़ी फिट की थी, इस घड़ी नाल मेल नहीं खानी, बात लगी है घड़ी नाल मेल नहीं खानी, उस समा किसी होर ढंग नाल दसदी है। आखो कि वो ढंग की है गुरबाणी दियाँ बेहतर पंक्तियां रखा उस पर मनुख दुख बैठा है, बेचैन बैठा है, परेशान बैठा है, एक मिनट इंज लगता है जिमें एक घंटा, एक घंटा इंज लगता है जिमें एक दिन। बाबा फरीद कहने फरीद आ राती बढ़िया बहुत लंबी है नहीं लगती, क्यों दुख दुख उठन तुकना है औके ने औके विछोड़े से निकलते, जिस नाल बहुत प्यार है, बहुत प्यार है विछोड़ा है औके निकलता, औके दिन नू लंबा कर रहे हैं, औके रात नू लंबा कर रहे हैं, औके समय नू लंबा कर रहे हैं। फरीद कह रहे हैं फरीद आ राती भी बड़ी बहुत लंबी हो गई है, दुख दुख उठना पास तुखना है होके होके विछोड़े च निकल रहे हैं, होके तड़पने च निकल रहे हैं, तड़पना तड़पा के रुला भी दे रहे हैं, यह भी मैं कर रहा रोण वाली रात कयामत हो जाती है, ये भी मैं कर रहा, रोण वाला दिन कयामत हो जाता, ऐसा कि कोई नहीं होगा किसी न किसी के विछोड़े च रोया ना, ऐसा कि कोई नहीं, मैं नहीं मनता, मनुख जमदा ही रोंदा होया किस तरह कह सकता मैं नहीं रोया, ऐसी भी कोई गल नहीं, जीवन भर रोने ही रोने, रोने भी थोड़े से निकलते हैं। एक होर नुकता भी मैं थोड़े सामने रख दिया, सामने आके वापस ना करा, गुरु नानक देव जी महाराज के बोल बड़े कीमती, बड़े कीमती, वडहंस महला पहला विस्कार दियां बनती, मैं वो बंद

0: کہ دو بات سہن کر بابو ہزارہ بابا نے کیوں ان دو ہاتھوں کے قابو کتنے ہزارہ بابا کوئی دس سر راون دے نہیں سن دس مہان سر جو سوچ سکتے ہیں بندہ سوچ رہا دس مہان سر جو یاد کر سکتے ہیں وہ کلا یاد وہ دس سر اتنا انہیں بھی ہر پہلو کی کھوج کی تھی یہ بھی یاد کرا راون بھی اپنے آپ ایک مہا پنڈت مہان گیانی اور میرے خیال سارے بھارت نے اگر راون نال کسی نے انصاف کیتا ہے کیول گرو ارجن دیو اور کسی نے پنکھی میں تھوڑے سامنے رکھا چوبولے محلہ پنجاب کمن لوگ کی سپریم کی دم کیوں ہوتی ساتھ راون ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کا اے دھن سمپدا دے مالک پیار کا سودا پربھو دے نام کا سودا جے مایا کی دمڑیاں نال آنا راون کوئی رنگ بھکاری نہیں تھی راجا سی سونے کے رنگا سی انہیں اپنا سیر کر کے گول رکھے شیو جی نے جوڑے انہیں پھر کٹے شیو جی نے جوڑے انہیں پھر کٹے شیو جی نے منگیا بھی نہیں کٹ کے اگو رکھے کلگی گھر میں پانچ تیرہ کی منگ بھی تھی منگ ادھے سے بچ گئے ادیاں چو ادے ماتا جی کو چلے گئے لال جی کو کی ہو گیا ابھی کوئی بکرے ہیں سر من گئے سر من گئے اے ننگی تلوار لے کے کرے اکھان بھی لال ہے سمجھاؤ نہ کدھر تلوار چلا نہ دیں ادے بچ گئے ادیا چو ادے ماتا جی کو چلے گئے جیڑے بیٹھے سن وہ بھی کھڑے گئے کملے کھڑا ہوا دیا سنگھ کہ داتا منگتے کیوں جس دن یہ سر تھوڑے قدم سے رکھا سی اصل تو اس دن کا سمجھا تھوڑا سا ہے اصل تو اس دن کا سمجھ کیوں منگے ہے ہی پڑا منگ بھی شیو جی نے منگ نہیں کی راون کٹ کے رکھا تو خود اندازہ لگاؤ کتنا تو پریمی کتنا تو کردار کتنا تو بہرانی اور کتنا تو گیانی ان سمجھ سے پاویں سونے کی گنت ہے پاویں دھن سمپدا ہیرے جواہر میرے کو بہت ہے پر ایک مہاپرش کی اتیس مایا کی دمڑیاں نال نہیں ملتی اگر مایا کی دمڑیاں نال مل جاتی ہے اتیس تو سنت بھی مایا ہی ہوئے گا سنت نہیں ہوئے گا یہ اس نے راون نسخہ بھارت دیش راون دشٹ کے وہاں کیا جاتا ہے خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں تلسی نے رامائن خوبیاں کے لیے بیان کی جب تیر لگے راون زمین پہ گرے ہیں رام لکشمن کہنے اپنے کرار زمین پہ بڑا قیمتی بن جا رہے رامائن سے دکھاتے ہیں سنسار تو بڑا قیمتی بن جا رہے ہیں ایدہ دل ایدہ دماغ خزانہ ہے بڑا کچھ بڑا کچھ یہ خزانہ رخصت ہو جائے لکشمن کچھ لے کے آ جا کچھ لے کے آ راون کو کوئی شکشا لے کے آ کوئی گیان لے کے آ جس دے کول گیان لین واسطے رام اپنے پیرا نو بھیجتے ہیں رام نالوں زیادہ گیانی वरना ज्ञान लेने की लोड़ की, समझ लेने की लोड़ की है। आपकी ज्ञान की गल करा, हिंदू जगत के चंगे दार्शनिक फिलोसफर दार्शनिक सहन हो गए, एक पास कहें ज्ञान लेने वास्ते भेज है। इसका मतलब कुछ गलों बारे जो ब्राह्मण जानता से राम नहीं जानते, लफ्ज को कहने जा ऐसा ना हो उसका दम टूट जाए और खजाना चला जाए। जा लक्ष्मण गया अहंकारी कबीर का बंदा, अहंकारी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, जब नहीं सकता। अहंकारी गुरुद्वारे टिक्का होगा टिक्का ही चला जाए, गुरु तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, किसी काम तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उन्हें जरूर होंगे सकल बोल होता है ज्यादा जानता, मैंने सब कुछ पता। लक्ष्मण राम के सिर को खड़ा होकर कहना है ब्राह्मण देवता मेरे विराधा राम कहने ने तुझे बड़े ज्ञाने बड़े ज्ञान जीवन के जिन्हों गलों की बहुत लोड़ हो सकती है सानू भी गल सानू भी गल अखा खोलिया ने रावण ने तकनी की हकालत की फिरका और अखा बंद कर दी। लक्ष्मण वापस आ जाए कहते भगवान उन्हें तो बड़ी भैड़ी निगाह नाल मैंने वेखे बोले ही नहीं, पता है राम जी कहने लक्ष्मण एक महान मनुख न तेन बुलाने की जा चली है दसो तू उसके कदमों खड़ा अपना मस्तक उसके कदमों से रख और हाथ जोड़ दे दो ऐ देवता ऐ ब्राह्मण देवता उसकी महान ज्ञानी कि सारा ज्ञान थोड़े नाल चला जाए कुछ साड़ी चोरी भी असली लक्ष्मण ने इस तरह ही किया इस तरह ही। राम के मुंहों दो बोले निकले कि दम टूट गया। लक्ष्मण मनुख की जिंदगी कल कदा ही नहीं आता, जो जरूरी काम हो आज ही कर लेना चाहिए, उन्होंने मंतवी नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत नहीं करना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने नहीं विलंब धर्मन विलंब पापन, पाप करना है बहुत बहुत कल के सुन पुण करना है आज कर आज अगर बहुत बहुत किया हो सकता है पुण ना कर सके, अगर तू पाप में पहुंच बन किया हो सकता है पाप तो बच जाए। नहीं विलंब धर्मन विलंब पापन, पर असी उल्टे चलने शराब पीनी है हमें पीनी है अज पीनी है, अमृत छकना है कल देखा अगली विसाखी से देखेंगे, अगली विसाखी से तू रहना नहीं तू लावा पटा ले लाया है कल देखा परसों हमेशा मनुख शुभ न पोषवान कर रहा है अशुभ न होने करता। रावण ने चोली पर है लक्ष्मण दुष्ट का वाक्या गया मेरे ख्याल रोहे जमीन से अज तक इतनी बेइज्जती किसी भी नहीं हुई जिसने रावण की साल दे साल चलाया पर सारे भारत के साल दे साल इसका पुतला जलाया जाता है, पता किसी की तोहीन करनी हो बेइज्जती करनी हो अभी उसका पुतला जला साल दे साल जलाया एक प्राण है नहीं जलाया जाता और जलान भी नहीं लेंगे। कमल रावण कमल ब्राह्मण उन्हें जला और मैंबर पार्लियामेंट जो तमिलनाडु नाल संबंध रखते हैं उन्होंने पार्लियामेंट से आवाज भी उठाई अगर तुम सारे भारत में साल में साल रावण में जला हुए इसका प्रतिकरण हो सकता है, इसका रिएक्शन हो सकता है, प्रतिरोध करेंगे तमकी दीजिए। लेकिन जब पुराना साल में साल जलाया जाए, लेकिन एहसास भी है जलान तो पहले जिला तीर मारता है राम स्वरूप बन के आंदा है राम ऊपर परमा भी करता है सारा दिन भारतवासियों के ऊपर प्रसाद भी रखते हैं मत्था भी टेक लें रावण हैरानगी अंदर अचेतन एहसास है ज्ञानी सियाणा विद्वान राम तीर मारन तो पहले जलान तो पहले राम भी मत कर रहे हैरानगी। फिर इतनी बेटी क्या दुष्ट क्यों आख्या जाता है हार गया हार गया। जो हार जाए शैतान बन जाता है और जो जीत जाए भगवान बन जाता है। भगवान कौन जो जीत गया शैतान कौन जो हार गया बस नहीं ऐसे नहीं। हर जेतु भगवान हो जाता है जगदम्बा हो जाता है देवी काली माता हो जाती है अगली स्त्री है हार गई के चंडारण हो गए डायन हो गए हर हारिया हुआ शैतान कहलाना है हर जीतिया हुआ भगवान कहलाना है। जेतु दुखे कभी लोग किसे देते हैं दार्शनिक लोग विचार पेश कर रहे हैं कमल कलम दे धनी कलमा चलाने में जेतु दे आगे हारे बने एक लवल है महाराज हारे को हरी नाम हारे वास्ते के बस हरी नहीं नाम हारे को हरी नाम दस से महान तो रखने इस तरह के दस फिर नहीं सन सिर के अंदर दस से इतनी याद शक्ति किसी थी कि को महान या राज रखने वाले दस सिर कट्ठे किए जान इतना ही सिर है दो हथों से इतनी ताकत थी कि हजारा हथ अगों जुड़ के खड़े होते सन कैंसर है इन उर्दू का शायर इन ध्यान करता है किसी के एक आंसुओं पर हजारों दिल तड़पते हैं किसी का उम्र भर रोना यूनी बेकार दो हंजू निकले किसी रिया हजारा अखा रो पड़िया पर कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा किसी ने पूछिया भी नहीं है हंजू क्यों क्या किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। दो दूरियां लागू होंगे हे प्रभु तो मेरी समझ तो लो तू मेरी सिमरती हो चेते हो समझ समझ के ये समझ मिलती है तू मेरी समझ तो करे तो हृदय याद कर लगता याद कर जिन्हों का हृदय याद नहीं करता तो याद जिन्हों की प्रभु तक पहुंचते ही नहीं अजय शायद समझ नहीं आएंगे कि असं बहुत कुछ समझते असं बहुत कुछ जानते इसे अडंबर ने कि गुरुद्वारों को कलेष का अखाड़ा बना दिता जबकि शांति दे अखाड़े आनंद दे अखाड़े कि जी गुरुद्वारे चो भी कलेष मिले तो शांति के पदों गुरुद्वारे तो भी दुश्मनी के जज्बे मिले तो मित्रता कितों सिखाएंगे गुरुद्वारे तो भी वैर विरोध मिले तो भाईचारा कितों सिखाएंगे। पर यह सब कुछ क्यों होता है मैं जानना मैं बहुत कुछ जानना मैं बहुत कुछ जानना बस यही सब तो वड्डी बोल तो सिख भी नहीं है सिखता के मतलब मैं सीखना चाहना नहीं जानना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तुम मेरी समझ तो परे, समझ समझ के मैं ये समझ है तेरी समझ तेरे जगन पास किरदार याद कर याद पाऊंग। पर फकीर के सड़क के कह गया अमीर पुत्रो, हे प्रभु ये समझ आ गया, समझ नहीं पहुंच सकती पर करा की याद भी नहीं पहुंच। अब तो याद दे दास्तान की भी पहुंच रहे, दोस्तों ने कितने दूर बसाई है बस्तियां, आए मेरे खुदा कितना दूर है, मेरी याद नहीं पहुंच, मेरी चलती नहीं पहुंच, क्यों नहीं पहुंचती। गुरबाणी इस दार्शनिक ढंग न जिन्हें बयान कर दी है, मैं कोशिश कर रहा है कि दोपहर का वक्त इस तरह की कथा आँगी अमृत वेले, ये भी मैं कर रहा दिल दिमाग ताजा होंगे, थोड़ा सुनने को भी हिलता राजी होंगे, सुनाने को भी दिल दिमाग राजी, संबंध हो रही होता है। हूं जोड़ा सुना तो सुनाना हो इंज हों जिमें दो मंडला पत्थर भी सिर पर हो कोई पहाड़ से चढ़ गया, इस तरह अमृत वेले इंज हों जिमें मैदान से बंदा दौड़िया जाए दौड़े। खैर मुख्तसर मैं दूरी की बहुत नेड़े बहुत नेड़े, फिर दूरी की है मन दूर है मन दूर है, इस करके परमात्मा दूर प्रतीत होता है। इसलिए आपको वे मैं कह रहे हैं मन दूर है, फिर ये परमात्मा को समझिए आकाल है काल बेचने में समय बेचने में, है जो घड़ी समा दसदी पी है या थोड़े हाथ के जो घड़िया बनिया ने समा दसदिया ने, परमात्मा ने साढ़े अंदर एक घड़ी फिट की, इस घड़ी नही खानी बात लगी हुई घड़ी नेल नहीं खानी, उस समा किसी होर ढंग दसती आखो कि वो ढंग की है। गुरबाणी दिया बेहतर पंक्तियां रखा उस तो पहले मनुख दुख में बैठा है, बेचैन बैठा है, परेशान बैठा है, एक मिनट इंज लगता जिमें एक घंटा, एक घंटा इंज लगता जिमें एक दिन। बंबा फरीद कहने फरीद आ रात वड़ियां बहुत लंबी है नहीं लगी, क्यों दुख दुख उठन तुकड़ा है औके है औके विछोड़े से निकल गए, जिस नाल बहुत प्यार है बहुत प्यार है विछोड़ा है औके निकल गए, औके दिन नू लंबा कर रहे हैं औके रात नू लंबा कर रहे हैं औके समय नू लंबा कर रहे हैं। फरीद कह रहे हैं फरीद आ राती बड़े बहुत लंबी हो गई है, दुख दुख उठना बस टुकड़ा है होके होके भी थोड़े च निकल रहे हैं होके तड़पने च निकल रहे हैं, तड़पना तड़पा के रुला भी दे रहे हैं, यह भी मैं कर रहा हूं। रोन वाली रात कयामत हो जाती है, ये भी मैं कर रहा हूं। रोन वाला दिन कयामत हो जाता है, ऐसा कि कोई नहीं होगा किसी ना किसी से भी छोड़े चढ़ोया ना, ऐसा कि कोई नहीं। मैं नहीं मानता मनुख जमदा ही रोंद होया किस तरह कह सकता मैं नहीं रोया, ऐसी भी कोई गलत नहीं, जीवन भर रोना ही रोने रोने भी छोड़े से निकल गए। इसके उत्ते एक होर नुकता भी मैं थोड़े सामने रख दिया, सामने आके वापस ना करा, गुरु नानक देव जी महाराज के बोल बड़े कीमती बड़े कीमती, वडहंस महला पहला विस्कार दिया बनती मैं रोबंदी सब जगह रोना और उन्होंने वर्णों पंगे इसलिए आपको भी गुरु नानक की शायरों वाली भाषा परिवर्तन शायद कविया की कल्पना की कल्पना हो गई कल्पना नहीं सच्चाई सच है थोड़े सामने मैं उजागर करा मैं जो बंदी सब जग रोना रोने वणों को फेरो एक ना रोना मेरे तन का विरह जिनो पेरों में छोड़ी एक थान रोण का जिक्र करते हैं फिर सतगुरु कहने कोशिश भी की थी इसका नहीं रोया मैं रो बंदी मैं रोई रिजक की खातर सारा जगत रोंद पशु पक्षी तक रोंद मैं रो बंदी सब जग रोना रोने बड़ा पके मैं रोई परिवार दे सारा जगत रोंद पशु पक्षी तक रोंद मुर्गा बच्चे को भी बंदरी चुकी फिर जोंदगी नहीं छोड़ती सड़क मैं रो बंदी सब जग रोना रोने बड़ा पके मैं रोई पदार्था दिता सारा जगत रोंद पशु पक्षी तक रोंद रोना विछोड़े च निकलता विछोड़ा तड़पा के रुला देता मैं रो बंदी सब जग रोना रोने बड़ा पके पर कितना रोना मेरे तन का विरहा जिनो फिरों विछोड़ी प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया ना रोया खुद मैं बहुत रोया खुद मैं बहुत रोई मैं रोई परिवार के विछोड़े मैं रोई पदार्थों के विछोड़े हे प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है मैं नहीं रोई तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया ना रुलाया एक ना रोना मेरे तन का विरहा जिन्हों फिरों विछोड़े दो शब्द बर्दाश्त करना किसे तीरथ का जल मनुख दे गुनाहां धोन दे समर्थ नहीं किसे नास्तिक मैं ना समझ किसे भी तीरथ का जल मनुख दे गुनाहां धोन दे सफल नहीं है प्रभु विछोड़े विच निकले हुए दो हंजू जन्म जन्मां दे गुनाहां धो के हल कर दे जन्म जन्मांतरा के पापा धोते चलो यही तस्दीक भी चाहिए तस्दीक मैं करावा भाई नंद लाल भाई साहब भाई नंद लाल वो कहते हैं शाहे उमेदे आशिक पर विस्तमर न गिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मान करते होंगे सन भाई नंद लाल और उन्होंने जब मैं मंगा पढ़ना गुरु को मंगते ही मैं हैरान हो जाता एक दिन से कलगीधर पातशाह ने प्रसन्न होते गया भी तेनों कुछ देने को जी करता है मेरा पता जितना बड़ा प्यार हो सदके हम जी करता देने को कुछ जी करता है पर जितना नफरत हो ना कहना हो खोन को जी करता जितना प्यार हो तो बंदा सोचता है इन सुख दे देंगे आराम दे देंगे मान सम्मान दे देंगे लोड़ पै जाए तो इसको अपनी जिंद जान दे पर जिस नाल घृणा है नफरत है दुश्मनी है कौन नो जी करता एदा सुख खो लो एदी इज्जत खो लो एदी अनमत खो लो एदी मान मर्यादा खो लो एदा मान सम्मान खो लो मौका लग जाए तो इसकी जिंद जान भी खो खोन भी जी करता है बशर्ते दुश्मन देन भी जी करता है बशर्ते अपना ते प्यारा है सतगुरु कहने नंद लाल तू मेनू बहुत प्यारा करता है हम मैं सोचना तेनू देवा की चल तू आप ही मंग ले आप ही मंग नंद लाल की मंग मैं बड़े सामने रखा या इलाही इन दिलंबना शौक दे देना इस दिल दे रब का शौक दे रब की तड़प दे रब का प्यार दे बाकी की देना اے میرے الہی یا الہی ان دلمنا شوق دے درد لو البند دے گا شوق دے. پتہ ہے شوق کس کو کہتے ہیں؟ پرانے بزرگ جانتے جس زمانے منک ویچے جاتے سن برگا کرو جی بلگم کرو جی جیڑا بک جانا سی خریدار وہ گل سے ٹاپ پا دینا سی پٹا پا دینا سی اپنے موت کا میرا غلام بادشاہ اس طرح غلام خریدتے سن غلام بیچتے یا الہی ان دے لمرا شوق دے در دلو بس بند دے گا شوق دے میرے گلے میں بندگی کا پٹا پا دے میں تیرا غلام اپنا غلام بنا دیا میرے گھر میں پٹھا تھا. ستگر کہتے ہیں بس کچھ اور بھی من یار راہی جس میں بیگنا آئے میرے میں جس دن نند لگی نہ منگا نو پڑیا حیران ہو گیا من یار راہی جس میں بیگنا آئے میرے اے میرے الہی اے میرے گرو دینا اور اکھان دے جڑیاں پرماتما نو ویکھ سکدی اینا اکھان نو میں دیتا یا الہی جس میں بینا اے میرے در شرم از اس سے سودا اے میرے سر وچ او عشق دے لوکی کہہ دے نند لال سدائی ہو گیا پاگل ہو گیا. مہاراج اجے دے لوکی مینو گیانی کہندے کبھی کہتے ہیں ودوان کہتے ہیں اے میرے گردیو اجے مینو کسی نے پاگل کہنا نہیں چاہیے پائسا پائنا یا الہی چشمے بھی نہ اے میرے درس رم اب اس کے سودا اے میرے عشق چاہے مزاجی ہوئے عشق چاہے حقیقی ہوئے سنساریاں نو پاگل لگتا ہے اے بندہ پاگل ہو گیا کیوں وہ سماج نال تال میل ہی نہیں بیٹھتا بدلا سے سنداریاں جوڑ کرے گا سارا بنارس کہہ رہے ہیں لوگ کہیں کبیر بورانا کبیر پاگل سارا بنارس کہہ رہے ہیں کہ ہوں بنارس کے واسطیاں کون دسے کم وقت کوئی تو بندہ جڑا سیاح ہے باقی کے ساری پاگل نکل گئے سب پاگل ہی کوئی بھی ملک ہے جڑا سیاح کوئی کہے بھوتنا تو کہے بیچارا کوئی کہے آدمی نانک بچارا ویا دیوانا شاہ کا نانک بہرا یہ بوڑا ہو گیا پاگل ہو گیا ہوں جگت کے لوگوں کون دسے سنسار میں ایک ہی سیا منکھ ہے باقی تو سب پاگلوں کی اور سن کے حیران ہو کہ مہاتما بدھ ایک بڑا قیمتی بول ہے میرے پیارا لگتا ہے انہیں کام پر دیکھ رہے اپنے نکل بتی چچیرے پھر جو انہوں کا چیڑا بن گیا کہ آنند انہوں کہ آنند بہت وڈی بھیڑ دے کوئی چنگے منک نہیں ہوں گے اور چنگے منکھان کی کبھی بھیڑ نہیں ہوئی کبھی بھیڑ نہیں سوتا سوتا لفظ میں پھر دوہرا آنند بہت وڈی بھیڑ دے کوئی چنگے منک نہیں ہوئے چنگے منکھان کی زمین سے کدی پیڑ نہیں ہوئی کدی پیڑ نہیں جن نان کو ٹنڈ میں گنہوں گرمکھو کوئی اس کا پیڑ نہیں کدی نہیں ہوئی پر پتہ ہے لوکی بھیڑ تو برباد ہوتے ہیں خدا کارن ایک ایرانی سوفی سنت سادی دستے ہیں غلط العام صحیح غلط العام صحیح 99 بندے غلط ہوئے تے ایک صحیح ہوئے 99 بندے اس ایک نو غلط ثابت کر دیں لوکی منن گے بھائی 99 بندے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں تو غلط ہو جبکہ حقیقت یہ ہمیشہ ہی 99 غلط ہوں گے کوئی غلط صحیح ہوگا ہمیشہ ہی 99 غلط गलतुल आम सही, आम बंदे गलत होवन सही समझे जाएंगे। एक बंदा सही होवे गलत समझे तो होगा तो एक सही भीड़ ने, बाकी जो सारे गलत पागल भीड़ पागला नहीं होती है तो ताकत भी पागलों को आती है। ये पागल को सही मनुख न सच्ची कभी देखा है बंद बंद कर देते हैं, दीवारा से चढ़ देते हैं, सूली से लटका देने में, फांसी से लटका देने में, क्योंकि जड़े रहने तो ये सही एक कौन है भीड़ कभी सही नहीं है। जब कोई मैं ये कहना है और संत गलत थोड़ी ने इन्नी भीड़ उन्हें को जाती है, मैं कहते वास गलत भीड़ तो हमेशा ही गलत गलतुल आम सही, आम बंदे गलत होवन सही समझे जाएंगे, इस सही हुए गलत समझे वो जरा सही होगा वह जगत नाल तालमेल नहीं बैठना तो जगत पागल कह रहा है। नंद लाल कहने ऐ मेरे गुरुदेव अजय जगत ने मैनु पागल नहीं आख या लाली जस में बीना है मिले धन शरण अज इसके सौदा है मिले धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने मैं रो बंदी सब जग रोना रुनने बणो पंगे मैं रोई रिजक दी खातर सारा जगत रोंद पशु पक्षी तक रोंद मैं रोई पुत्रां दे विछोड़े सारा जगत रोंद पशु पक्षी तक रोंद कितना रोना मेरे तन का मेरा जिन हों पेड़ों विछोड़ी हे परमात्मा विछोड़ा ते तेरा भी है तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया है ना रुलाया है। हंजू निकलते हैं परिवार के विछोड़े च प्रभुता के विछोड़े पदार्थों के उतरा फिरते लोग मिलने हैं और ये हंजू दिल का भार हौला नहीं करते नहीं करते। किसने दो हंजू रब के विछोड़े च लगना यकीन जानो सारे पाप बन जाए सारे गुना बन जाए भाई साहब भाई ना मिला तो कहने शाहे उम्मीद आशिक ऐ आशिक ऐ प्रेमी तू उम्मीद का बूटा लाया आशा का बूटा लाया मिलाप का फल नहीं लगेगा हर विश्व का मरना भी समर फल तो कहने पश्चिम में शाख बूटा समर फल शाखे उम्मीद आशिक उम्मीद की शाख लाई है आशा की शाख लाई है और विध समरना के इनू हर विध फल नहीं लगेगा मिलाप का फल नहीं लगेगा क्यों क्यों नहीं लगे जब आशा करके मैं बात कर रहा प्रभु मिले आशा करके मैं गुरुद्वारे आया गुरु मिले आशा करके मैं कीर्तन सुन रहा रस मिले आशा करके मैं बाणी पढ़ रहा प्रभु मिले क्यों नहीं मिलाप का फल लगेगा। नंद लाल कहना हर विध समरना के कोई क्यों कारण दस देना शाहे उम्मीद आशिक हर व्यक्त मर न गिर अब आओ बे हर्ष के मैं जगाम ता सबल कर न राज बूटा फल तक नहीं अपड़ेगा क्यों उस दिन के अंदर है नहीं पानी के पाया ही नहीं हम तुम आखोगे आशा के बूटे को उम्मीद के बूटे को केड़ा पानी देंगे अब आप दे अच्छे मैं जगह इन्हों दो पुतलियां मैं जगह तू अखों का जल से कभी सिंचे मिलाप का फल रोया होगा पुत्रां की खातर कारोबार की खातर पत्नी की खातर पति की खातर भरावान की खातर भैणा की खातर प्रभुता की खातर तू कदों प्रभु वास्ते रोया तू कदों परमात्मा वास्ते रोया। इस वास्ते एकांत दसिया गया जब एकांत में करो मन में बैराग पैदा हो अक्सर बहुत वे इकट्ठ के जब कोई जग करता है ये दरिया जो जन्म जन्मांतर के गुनाह हो सकते हैं लोगों का प्यार आ जाता है कि लोग की कहने लगा है पागल आ जाए पागल के आखने ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਗੇਟ ਬਣੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਦਰ ਸਰਮ ਅਜਿਸ਼ ਸੌਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਏਕਾਂਤ ਜਬ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੋ ਛਿਸ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਦਰੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਰਦ ਰੱਖੀਏ ਸਰ ਬਾਹੀ ਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਰਾਤ ਮੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ, ਹੌਕੇ 'ਚ ਵੀ ਚੌੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੱਤਿਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂੰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਗੇ ਜਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਗੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਲਗਦਾ ਲੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਯੂੰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਗੇ ਜਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆਸੂਆਂ ਕੀ ਧੁੰਦ ਮੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਇਤਨੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਆਵਕਾਲ ਸ਼ਰਮੇ ਨੋ ਮਾਰੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਵਕਾਲ ਸ਼ਰਮੇ ਨੋ ਮਾਰੀ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆਵਤਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨੋ ਮਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਵੀ, ਤੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰੰਗਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇ ਅਜ ਪੁਰਸੁਰਾਲ ਸਾਥ ਅਜ ਬਸ ਕੇ ਰੂਪੇ ਆਹੇ ਮਨ ਅਜ ਆਸਮਾਨ ਲੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੜਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੌਕੇ ਜਦ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਰਗੜੀ 'ਚ ਲੈ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ और जो भी बैठे थे घंटे दो घंटे दे दुख दे पीड़ा दे समा लंबा लंबा सुख दे आनंद दे समा छोटा इन महसूस होंगे अज का दिन इंज लग गया जिमें एक मिनट बंदा बेचैन बैठा हो कई शहरों का मेरा अपना अनुभव है उन्होंने बेचैन बैठा तो एक मिनट हूँ घंटा दिखाई देना दिखाई दे रहे कैनी दो घंटे का बोलना पे चुकी नहीं सकता बेचैन परेशान समा लंबा हो जाए पर बंदा रस में बैठा हो आनंद मगन बैठा हो घंटा जो लग जाता है जो एक सैकंड दिन इंज लग जाता है जिम्मे एक मिनट रुक जाता है समा आनंद दे समय की चार मध्यम पै जाती है घड़ी भावे कुछ कहती हिरदे हुए हिरदे की घड़ी कुछ और सारा दिन इंज लगता है जिम्मे एक मिनट ऐसे लोग उन्होंने बारे कहा जाता है इन्हें जिस समय को बन के रख कभी कोई कवि कोई दार्शनिक कभी कोई संगीतकार ऐसी संगीत की धुन छेड़ता हिरदा इतना मगन हो रहा है घंटा इंज लग जाता है एक मिनट और कहना पैदा इन्हें इस समय को बन के रख लेता दुख दे समा लंबा हो जाता है सुख दे समा छोटा हो जाता है परम आनंद दे समा खो जाता है परमात्मा की दुनिया समा नहीं है वो काल नहीं है अकाल काल नहीं है समा नहीं है आनंद स्वरूप आनंद मगन जब कभी सुख जुड़ गए किसी वक्त भी शब्द ना हो सकता है पंद्रह दिन इंज लंघन जिन्हें एक मिनट समा लेंगे समय की चाल कुछ और हो जाए इस वास्ते के परमात्मा समय विच नहीं है अकाल अकाल की दूरी की है मन काल में तन काल का हिस्सा है काल तन को मिटा देगा मन अकाल का हिस्सा है काल विच भटक गए समय विच भटक गए धर्म की साधना एक कथा कीर्तन वाहगुरु मंत्र का जप एक इस वास्ते है मन को काल चो कट के अकाल मान लो है एक बारीक विचार मैं कल बड़े सामने खोलने की कोशिश करांगा अगर गुरु ग्रंथ साहब ने मैंने कुछ समझता दी ताकत दी दावत मैं नहीं कर सकता कई दफा नहीं बनता मूल जब नहीं बनता मूल तो मैं सोचता आज बख्शिश नहीं मिली ऐसा समझना सतगुरु ने रहमत की थी तो फिर मैं थोड़े सामने रखना है ये मन नो काल चो कट के कहने अकाल ना जोड़े दूरी काल दिए समय दी तू मेरी समझ तो दूर तू मेरे चेहरे तो दूर क्यों तू अकाल है मन काल दे बड़े काल चो कट के अकाल नाल दौड़ना उम्मीद है अभ्यासी सज्जन थोड़े बहुत अमृत वेले का जिन्हों से रंग चढ़िया होगा सत्संग का कुछ थोड़ा सरूर जिन्हों को होगा हो सकता है उन्होंने सुनने की एकाग्रता मैं बोलने की तौफीक दे दे शक्ति दे दे कल खुलासा करांगा अज इतनी समाप्ति सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद बहुत शुक्रिया क्षमा वाहेगुरु जी का खालसा लेकिन कहने
1: सिखाया भारत के तमाम वर्गे पीढ़ी हैं उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचे दूरदर्शन जो भारत सरकार का डीडी सरकार का जैन भी इस तरह के बहुत वे वे चैनल जो भारत में चल रहे हैं सारे लोग सारिया की मौजूदगी पन्ना ने यह फैसला किया जेड़े जेड़े सज्जन कदे बैठने इतराज करते नहीं बैठ सकते कुछ मजबूरियां उन्होंने योग बंदोबस्त किया जाए भाव उन्होंने ये बंद नहीं है। पिछले हुक्मनामे में इस चीज का नाम सौ दिया गया। जब विश्व के सम्मेलन जिसे मेरे कारण बीमारी का सज्जन पाए भाई साहब भाई दोनों से मेरे ग्राम से हुक्मनामा जारी हुआ पहले उसका सत्तर साल है वो गुजर गया। आज जब महसूस किया गया तो बेकसूर था हुक्मनामा जो कटिया गया सारी संख्या में संगठन अकाल तत्व जगेदार ने वो हुक्मनामा और हुक्मनामे होते रहे हैं हुक्मनामे सुधाई भी होती रही है हुक्मनामे वापस भी होते रहे हैं क्या हुक्मनामे जी असान के सामने वापस हुए हैं। भाई साहब हरदेव सिंह गरीब बाबा भाव सिंह के बहुत हुक्मनामे मुझे निकले हैं मेरे सामने वापस हो गए और रखा दफा रहती है इसमें इतना विवाद बना लिया कि सिख किसको दूर हो गुरुद्वारा गुरुद्वारे को दूर हो आप जो भी बड़ा कीमती नहीं बन गया परमात्मा से मिलन वास्ते मिले विवाद वास्ते नहीं नाम रक्त मानव वास्ते मिले है इस विवाद वास्ते नहीं मिला और इस विवाद से जिंदगी बर्बाद जाने की मिलता काफी कुछ नहीं है। इस वास्ते मैं हूं फकीरी तबीयत नाल विचरना भावे तू मेरा अहंकार समझो तुम्हें मान लो सरकार लो ठीक है ना लो तो मेरे मन में सौंपे जो मैं समझो अरदास करके चले दादा मेरी जबान को कोई ऐसा असर ना मिले जो गुरु आते के मुताबिक ना जो तेरे स्वभाव के मुताबिक ना हो अगर तेरे स्वभाव के मुताबिक तेरी आशा के मुताबिक तू कहला रहे हैं और रो रहे हैं पावे कोई निराश हो गए कि नहीं कोई दवा पावे कोई विवाद कर रहा है कुछ भी नहीं कोई दवा नहीं कोई सुनना चाहे ओरी मर्जी कोई नहीं सुनना चाहे ओरी मर्जी दूसरा बंदे से देख मैं आज तक के रहे हैं आज तक नहीं मेरी मर्जी में ले रहे हैं और जिसके ले जा मेरी मर्जी क्यों मैं जिससे मुनासिब समझना कि घंटा दो घंटा दौर के बाद विवाद ही खड़ा करना है मैं भी दुखी अगले भी दुखी ऐसे दूर बाद विवाद खड़ा करना ऐसे कथा हो रही है दो दिन कथा रखी गई रात आदमी भरे दस मेघ दरवाजे उसी सजाना है क्या कभी मैंने हुक्म किया मैं तुम्हें आवा लाजमी मैं हाजिर करनी ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानना तो दास कर उन्होंने खुला समा मांगा सिंधी समाज में बहुत वाला काम गुआरी बाबा सारे संगठने बहुत सारे सिंह लगाए बड़ा प्रचार किया उन्होंने बस्ती थी और उन्होंने पोतरे करीबन करीबन बड़े समारोह चलाने वाले इसके गुजरात मध्य भारत और राजस्थान में संख्या कठिया करीबन हजारा भी लगा मैं उन्होंने कहते हुए कोशिश कराऊंगा कि उन्नति करेगा जब थोड़ा आप भी बुलाए तो इसमें आते हैं आज बनाऊंगा तो मेरा भी फ्लाइट है मैं सदिया रहा हमारा फिर भी मैं आखिरी आती वर्ण भी है कोशिश कराऊंगा इन्हें मैं दाद नहीं कर पाऊंगा पर सरदार सुंदर चंद्राना मैं बार बार फोन आया मैं गुरुद्वारे का उद्घाटन हो रहा है कि मेरी गरीब से बोल गया मैं कहा उद्घाटन हो रहा है गुरुद्वारे का कि मैं उस दिन की सवाल ना कर दी मैं क्या दो दिन दिन में छुट्टी ले मैं देख पाता था क्योंकि सताई अठाई मदद की गए समाज में दास में से सभी में पहुंचना इन्होंने मेरे बनाव से सभी ला दिया मैं ठीक है मैं दो दिन दिनों तो छुट्टी रहे इस तरीके ना जाए सोमवार आदमी करके चले जाना तो फोन मेरे को किसी वास्ते टाइम नहीं चलेगा नहीं है कि मैं मारने का भी कर रहा या मैं जाना नहीं जाना जिसके बाद में बाद उसके वाकई मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना और जिसके जिसके अकाल तत्व का हुक्मनामा जो वापस नहीं हो रहा मैं उसे भी नहीं जाना ये भी मैं क्योंकि मेरे मन में अकाल तत्व का अधिकार है अलवर जो समागम हो गए सारे संतवानों के पास में, सब कई तरफ से आदमी का जो है सारे सत्संग जथेदार के पहुँच गए हैं, जथे पहुँच गए हैं। और मैं आप दुर्गत का मुदय, लेकिन अदाल करते हुक्मनामे में कोई अपना ही हुक्मनामा बनाई जाए, मैं उसमें सहमत नहीं, और मैं उसकी कोई याद नहीं।

साई छुआले जिन की तीसो पार पया कौन आन करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़या हो वह गुनेगार ताऊ मी साधना मारी है जे हाँ काले कारणा तेरे हो नाव पुचारी है ऐसी कला न खेड़ी है जित डर गए गए आहारी है पढ़या अत्यो मिया विचार गए विचारी है मुझ चले तो अगे मारी है श्लोक महला पहला नानक ने शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझे ताहे सब जुग रथ संतोख का धर्म अग्गै रथवा हो ते तय रथ जतै का जोर अग्गै रथवा हो द्वापर रथ तपै का सत अग्गै रथवा हो कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवा हो महला पहला शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछै साथ रहे सबको सच समावे रिक कह रहा परपूर राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे जुज में जोर खली चंद्र रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अल हो गया नील बस्तर ले कपड़े

कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटी है पीछर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूटे पूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वैन दाड़ी तग ना पैरी तग ना हाथी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कड़ कागल दसे राओ सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना उस जान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर ते न जाए तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका भाई टोडी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला मानस खाने करे निवाज

धर्म कर्म का डेरा दूर, नान कूड़ रहा भरपूर। मथे टिक्का पेड़ पोती का खाई, हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहर हो प्रमाण, मलेश तान ले पूजे पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना। देख क्या चौका कदी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ यार। मत भिटे वे मत भिटे, यो अन असाडा फिटे। तन फिटे फेर करेन, मन जूठे चिली भरेन। कहो नानक सत सियाई है, कुछ होवे ता सच पाईए पौड़ी। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा। आपे देव आईया आपे ही कर्म कराइंदा। वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाइंदा। मदर पट्ठी जे करे सुल्ताना का उतराइंदा। दर मंगन पिख ना पाइंदा, श्लोक महला पहला। जे मोहा का घर मोहे कर मोहे पितरी दे। अगे वक्त यानी है पितरी चोर करे। वडिये हथ दलाल के मुस्ती ए करे।

जिन मन बसिया सोए पौड़ी। तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप मालियां लाए बैठे करपा सारिया। चीज करन मन पावंदे हर बुजन नाही हारिया, कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया। जर आई जोगन हारिया श्लोक महला पहला, जे कर सूतक मनी है सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जे ते दाने अन के जिया बाज न कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोए, नानक सूतक एक ना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला। मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परक्रिया परतन रूप, कन्नी सूतक कन पहलाए तवारी खाए। नानक संसा आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला, सबो सूतक

नानक दो वै कूड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जिथे है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल न हारी है।

साधु गल्ला करे कणेरिया खसम ना पाए साधु आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा तो परवान महला दूजा जो जी होए सो गुवे मौका कहे आवाओ

गए रात पौड़ी, चाकर लग गए चाकरी, जे चल रहे खिसने पाए, हुरमतिकनो अगली ओ वजो पे दूना खाए, खसमे परे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजो गुआए अगला मुँह मो पाना खाए, जिस दादा का खावना इस कही है सा बात।

हर सुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित पौ खत्म न जाए, नान सेवक काड़ी है जे से खत्म समाए पौड़ी, नान अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चरे बिचार, आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार, नानक करना जिनकी।

अकाल मूरत अजूनी साहब गुरु प्रसाद रागास्ता बाणी भगतां की कबीर जियो नाम दियो जियो रविदास जियो आसा श्री कबीर जियो। गुर चरण लाज हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जब उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया देव करो दया।

चूके, आपा पर निर्माण ना चीनिया, इन विद अभियो ना चूके, कहीं ना उपजे उपजी जाने, पाव अपाव बिहुना, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीना, ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण परम पागा, तो मन सुन समाना, आशा

ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग ऐसे संत ना मौको पावे डाला चो पेदा गटकावे रहाओ बासन मांझ चो

मुखो अपरस कहावे सदा सदा फिरे अभिमानी सगल कुटुंब डुबावे जित को लाया तित ही लागा कैसे कर्म कमावे कहो कबीर जिस सतगुर पेटे पुनरप जन्म ना आवे आशा बाप दिलासा मेरो कीना सेज सुखाली मुख अमृत जीना किस बाप को क्यों मनो विसारी आ गया, गया ना बाजी हारी मोई मेरी माई हो खरा सुखाला पहरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाओ बल किस बापे दिन हो जाया पंचा के मेरा संग चुकाया पंच मार पा

गुरु प्रसाद में सब किस सूझिया आसा। इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठन गन बाडा दू, किन्हें विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्तेरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे। नाको काटी कानो काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी आशा। जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीर्थ प्रमना, लुंजत मुंजत मौन जता कर, अंत तऊ मरना, तांते सेवी अले रामना।

अभ्यास करना, पंत मंत्र सब औखद जाने, अंत तौ मरना, राजभोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहूं न उबरना, कहो कबीर यूं

आए मोहे तुर्क करेगा आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए। अर्ध शरीरी नार न छोड़े ताते हिंदू ही रही है। छाड़ कतेव राम पज बौरे जुल्म करत है पारी। कबीर है पकरी टेक राम की तुर्क रहे पतिहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई। रे बौरे तुम

कटकूटे पो बात ना पूछे काडो काडो होई। देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई। लख छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो कैसा दर कह पाई। इस बंदे से जो

0: पदे इक्तुके
1: समस्त सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया हर का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई सहज बिलोव जैसे तपना जा रहा हो तन कर मटकी मन माए बिलोई इस मटकी में सब संजोई हर का बिलोव ना मन का बिचारा गुरु प्रसाद पावे अमृत तारा
0: कहो कबीर नजर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आशा
1: बाकी सूखी तेल निकूटा मंदल ना बाजे नट पे सूता बुझ गई अगर ना निकलो तुआ रव रहा एक

कला का सार पोगनहारे पो गया इस मूरत के मुखार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम।

तीस वर्ष तछदेव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी रासत मुग्ध फिरे। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार है। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकते, तब रे धर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए लै न गयो। आई तलब गोपाल राय की, माया मन

लगाई। सू मैं तन राखन को दिया, मुगद कहे तन मेरा। जम का दंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई। जो तुक पाव

जिन सास पछानिया तिन सपनी काई, सपनी ते आन सूस नहीं अबरा, सपनी जीती कहा करे जमरा, ए सपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इससे होई, ए बस्ती ता बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा, आशा कहां सुआन को सिमरत सुनाए, कहां साकत पह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत क्यों फूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई, आशा लंका सा को समुद्र की खाई, तिन रावण कर खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन

कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रहे न कतू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आसा पहला पूत पिछरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम भाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर तूला तिसके पेड़ लगे फल

किया अगन कुंड रहाया। दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। रहाओ बारिक ते दुर्ग पया होना सो होया। जा जम आए चोट पकड़े तबह काहे रोया। जीवने की आस करे जम निहारे सासा। बाजी गरी संसार कबीरा चेत काल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ। पांचों तत बराती राम राय क्यों पावर ले हो। आत्म तुह रंग राती गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा। मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ। नाभि कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय को दूलो पाया असबद पाग हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना। कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे। सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरह जरोरे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे हो किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं देखो त्यो दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप सावका करे लड़ाई माया सदमतवारी। बड़े पाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर चूत तने नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेबा विष्णु नैन नारायण हृदय बसे गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे। कब हूँ न पार उतार चढ़ायो कैसे खसमा मारे। तू बामन मैं का सीख दुल्हा बुझो मोर ज्ञाना। तुम तो जाते पूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आशा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान। साथ कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोहित कीन जिन ज्ञान रतन हिरलीन। रहाओ नैन देख पतंग

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब सुन रूप न होई पागा पंथ साज सब थाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी कृष्णा गागर फूटी काम चोलना पया है पुराना गया परम सब छूटी सर्व पूत एक है कर जानिया क्योंकि बाद विवादा कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा आशा रोजा करे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंहार है आपा

देखै खबर न करें दीन के बौरे ताते जन्म अलेखै रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर न होई अल्हो गैब सगल कट पीतर हृदय लिहो बिचारी हिंदू तुर्क दोहों में एक है कह कबीर पुकारी आशा ते पिता एक तुका कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई हर मेरो फिर हों हर की बहुरिया राम बड़े मैं

कह कबीर फिर जन्म ना आवे। आशा श्री कबीर जियो के दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हीरा हीरा बेद पवन मन कह जे रहा समाई। सगल जोत किन हीरा बेदी सतगुरु बचनी में पाई। हर की कथा

गुप्ता ही रा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाए आसा पहली स्वरूप तुझाम सुलखनी सहुरे पे है बुरी अब की स्वरूप तुझाम सुलखनी सहजे उधर करे।

लहरी संग पई अब मेरा जेठी और तरयो आशा। मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ, इन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रमुआ लावा रहाओ। कह कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जा

जिन लागे कुंगत काडे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूदे अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते आसा करवत पला ना करवत तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे रहाओ जो तन चीरे अंग न मोरो पिंड परे तो प्रीत न तोरो हम तुम बीच में हो नहीं कोई तुम्हें सुकंत नार हम सोई कह कभी सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत न होई आशा कोरी को काहू मरम न जाना सब जग आंत नायो पाना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पत्रियो ताना तरण आकाश की करघ बनाई चंद सूरज दो सास चलाई पाई जोर बात इक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे कर अपना कीना।

हवें। मनो कठोर मरे बनारस नरक न बांतिया जाई, हर का संत मरे हाड़म्बे का सगली पैंतराई। दिन सुन रेण वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक

अहनसु सहज सुपाय दर्शनो परसुयै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड़ बिख बिख काही। माया मोह परम पै पुरे, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो।

देहु दर्श सुख दातिया मैं गल बिच लहूं मिलाई जियो सो कहो अटल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे हैं गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह दशा जिस पास बैठिया सोही है सबना का बेसा

अंतन करण दीण अंत अंतन भिखण सुणन अंत अंतन जप क्या मनमंत अंतन जप गीताकार अंतन जप पारावार अंत कारण किते बिल लाही ताकि अंतन पाई जाहि यही अंतन जन कोई बहुता कहिए बहुता हुए बड़ा साहेब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ एवड ऊंचा हुए कोय दस ऊंचे को जाने सोई जे को अखहे बोल बिगाड़ू दा लिखी असर गावा रंग हवारू सोदार केहा सो कर केहा जित मैं सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारी केते राग परी सो कही अन केते गावण हारी गावे तो ठो कौन पानी बसंतुर गावे राजा धर्म लवारी गावे हैं चेत गोबद लिख जान है लेख लेख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे है इंद दासन बैठे इंदेव दयादर नाले गावे हैं सिद्ध समी अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जग जग वेदा नाले गावे है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पायाले गावन रतन पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडाव घर कर रखे धारे सही तुद न गावे हैं जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिनो पाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म बद जोड़ी ध्यान की करें बेभूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश आदेश आद नील नाद्य नात जुग जुग एक भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ वाजय नाद आप नाथ नाथी सब जंगी रद सद अबरासाद संयोग विजोग कार चलावे लिखे आवे भाग आदेश दस आदेश आदि नील नाद्य नात जुग जुग एक एका माई युगत व्याई दिन जले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवाण जब तिस पावे तिव जलावे जे हो वै फुरमाण ओहो वेख उन्हना नजर न आवे बहुता हे विडाण आदेश दस आदेश आदि नील नाद्य नात जुग जुग एक आसन लोहे लोहे भंडार जो किश पाय सुवार कर कर वेख सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेश दस आदेश आद नील नाद नात जुग जुगे कोवेश आसन लोहे लोहे भंडार जो किश पाय सुवार कर कर वेख सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेश दस आदेश आद नील नाद नात जुग जुगे कोवेश एक दूजी पौ लख हो है लख मैं लख वीस लख लगिणा किए है एक नाम जगदीश ए त्राह पत पबड़ियां चढ़िया हुई अकीस सुन गलां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर जपन जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जो सत जोर कर वेख सोई नानक उत्तम नीज न कोय राती रुति दीवार पवन पानी अग्नि पाताल तिस बिच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस बिच जी जोत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथ सोन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच बकाई उथ पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का को करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते वर में गाड़त कड़ी है।

केते तू उपदेश केते अंधचंद सूर केते केते मंडल देश केते सतबुदनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मन केते केते रतन संबंध केती अखाणी केती बाणी केते बात नरेंद केती सुरती सेवक केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड जथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे काट तकड़ी बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कह पिछे पछताए जिथे कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़ी है श्री सुधा सुधा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर जिथे जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीधो सीधा मैं मां माही ताकि रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठगे जाहे जिन कह राम बसे मन माहे तिथे भगत वसै कह लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख नजर निहाल तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड जे को कथे अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म दिवै तिवकार वेख विसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात बहारा तीर जसने आर अहरण मतभेद हथियार पाओ खला गंतवताओ पांडा पाओ अमृत दत डाल कड़ी शब्द सची टकसाल जिन को नजर कर्म तनकार नानक नजरी नजर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दाई दाया खिल सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के निड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹੇ ਨਰ ਬਰੰਜਾ ਤਿਆਰ ਪਾਤ ਨਿਹੰਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਓਜ ਕਹੇ ਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਹ ਸਹਣ ਗਣੀ ਜੈ। ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ਼ੰਭ। ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਕਾਲੇ ਨਮਸ ਦੰਗਰ ਪਾਲੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਰੂਪੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਰੂਪੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਭੇਖੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਲੇਖੇ। ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਕਾਈ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਜਾਈ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਰਾਮੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਠਾਮੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਰਾਮੰਗ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਧਾਮੰਗ। ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਜੀਤੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਪੀਤੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਬਾਹੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਟਾਹੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਨੀਲੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਨਾਦੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਛੇਦੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਗਾਦੇ। ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਪਾਰੇ ਨਮਸ ਦੰਗ ਸੋਇਕੈ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਨੇਕੈ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਪੂਤੇ ਨਮਸ ਦੰਗਾ ਜੂਪੇ। ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਖਾਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਦੋਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਦਰਮਾਨੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਾਨੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਦਰਵਰਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਪੰਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਗੰਮੇ ਨਮਸ ਦਾਸ ਰੰਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਰਾਸਰੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸ ਦਾਸ ਜਬੇ ਅਦੇ ਸਿੰਘ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਰਦਾਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਰਬਾਮੇ। ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ। ਨਮਸਤਾਸਤਦੇਵ ਨਮਸ ਤੰਗ ਪੇਵੈ ਨਮਸ ਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਵਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਵਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੰਗੇ। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸ ਤੰਗ ਕਰਦਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਤੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਬੰਦੇ। ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਰਸਾਕੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸ ਦਸ ਰਾਗੇ ਨਮਸ ਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ। ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ। ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੈ ਨੂਪੈ ਜੂਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਬੇਖਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਧਿਆ ਪਿਆ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਤਰਮਾਨ ਅਨਦਾਨ ਤਰਵਰਗਾਂ ਸਰਗਾਇਆ ਨੀਲਾ ਨਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਾਦ ਹੈ। ਅਜਨਮ ਹੈ ਵਰਨਾ ਭੂਤਾ ਵਰਨ ਹੈ ਗਾਂਜਾ ਬਾਂਜਾ ਜੂਝ ਹੈ ਜਾਂਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਅਰਬੀਕ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਸੂਜ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀ ਕੈਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਦਰ ਸੰਭ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਸੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਬਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਾਲ ਗਾਏ ਮਾਨਨ ਦਾਨ ਨੀ ਕੈ ਬ੍ਰੇ ਕੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਾਧਿ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੀ ਬੇਵੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ। ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧਿ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਪੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧਿ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਹਿਰਦੇ। ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਪੇਖੀ ਪਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੁਗ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ। ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗਾਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੰਗ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ। ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਾਸ ਸੰਸ਼ਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਦੰਤਰ ਦਾਂਤਰੰਗ। ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਅਦੂਰ ਦਰਦੰਗ ਅਗੰਗੋ ਕਰਤਾ ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਬਰੋਸ਼ ਬਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਦਿਆਲੰ
अशेदीय पेदीय नामंग कामंग सुमास्तु ब्राजी सुमास्तास्त तामंग तेरा जोर जा जरी शंब जले हां तले हां पीता वे हां प्रभु आजुआ देसा पेसा हिंप जंग प्रयात शंब अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य स्वाति निधान्य नमास्तुं धरनाथे नमास्तुं परमाथे नमास्तुं गंजे नमास्तुं पंजे नमास्तुंग काले नमास्तुं कृपाले नमास्तुं रूपे नमो सर्व देशे नमो सर्व भेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमदानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे दर्भंगे नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणाशी सदा सर्वदा सर्वदार दिशदंग नवासी जरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे जल राजे अटल साजे खल धर्मंग लाख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग पाले काले नम सर्वंग नम सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल शांत प्रसाद आद रूपनाद मूर्ति उन प्रख पाल सर्वान्तरमान देव बेवादार सर्वपाल सर्वकाल गौ सर्वगोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधू द्रवसाल नाम ठाम न जा जा कर उपरंग न रेख आद पुरुषदार मूर्त जो ना सेख देश और न पेशा कर उपरेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा विफल न राग नाम काम विहीन बेखद रामो न जाए सर्वमान सर्वत्र मान सैव मान तदाई एक मूर्त अनेक दर्शन अग्न रूपन एक अखिल खिल अखिल खिल अनंत कुबर एक देव पेव न जानी जय बेदर्ग देव रूप रंग न जात बासु जानी के जय बहुत आत्मात न जात जा करो जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचे हम पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त कल पुरुष देश धर्मधांस भरम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जग जद बदना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन अमुक्त दायक काम आप रूपा मी का नस्त देख पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अपंग नादमिक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायको सर्व गोवृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दयन भेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग हर रेख परम भेद प्राण जाक नीत भगत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवरी बहुचित मद पार छंद प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन अपंग उपमान अंगन पौ प्रकाश नेतन नाश आजन वाह शान शाह राजन राजपानन पान दीवान देव उपमान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनपूत अंग अपंग गतमित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्पन काम आत दुत प्रचंड मित गति अखंड अलिश कर्म अदृष्ट धर्म सर्व प्रनाड्य आन दंड बढ़े अंजाजरी छंद प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारिय बारे हरियंग करियंग नरनामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर जगर करदा चतर जगर हरदा चतर जगर दाने चतर जगर जाने चतर जगर भरती चतर जगर भरती चतर जगर पाले चतर जगर काले चतर जगर पासे चतर जगर वासे चतर जगर माने चतर जगर दाने जाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र पर दिशा दिशा दृश कृश भगवती शांत प्रसाद कथते के अशज दिश के अपज बिश के अगंज कर्म के अपज भरम के अपज लोक के अदत सुख के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रवाह के धर्म ध्वजाय के अशोक वर्ण के सर्वा वर्ण के जागतंग ग्रति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपानूप है के आदो देव है के आप भेव है के चतरंग विहीन है के कधीन है के रोजी रजा कर ही में रहा कह के पाक बेव है के कैबुल गैव है के आप बोल गुना है के शान शाह है के कारण को निंद है के रोजी दे के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं
के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पावने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र द्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र द्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र सापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के अकल राम है के सैव कलाम है के हुसन वजूह तमाम रजूह है मेसर सलाम है श्री खत्म धाम है गनीमल सकस्ता गरीबल परस्ता है बुलंदर मकान है जमीन वाल जमाना है तमीज उल तमाम है रुजुअल निधान है हरी फल जीमर जाग जकीना ने गल तरंग है बेद है पांग है अजीज उल निवाज है अग्निमन खराज है द्रवत स्वरूप है द्रोत विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सजोग सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाज तो प्राज है सदा सर्वसाज है समाज तो सलाम है सदैव काम है निर्वाज स्वरूप है गाध अनूप है ओम नाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रगा मे त्रिवर्ग त्रिपादी गंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वानरागे त्रिपक्त स्वरूप है सज सूद है नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सभा है विभक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद भंग है नागा रेखा बेघर मारवा अना अमार अनान अपरम है परम अकर्म है अनाद जुगाद जय है भय भूत है दूत है नास उदास दंद है बंद है भगत है प्रगत है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लेख देख है अलेख बेख कहा गय सम है गम अनिल अनाद है अनित सुनित जात जाद है चरपुट छंद प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे गाद स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे तर निरपंगी स्वरूप सरभंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न जात न माता न जात न पात नरसाग श्रीघ मित्री गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती छंद दव प्रसाद के जहाजूर है के हाजर हजूर है मिश्र गुलाम है स्वाद लगलाम है के साहब दुआग है के उदल जाग है करीम के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहमद है के राज करहमद है करीमल कमाल है के उसल जमाल है करीमल खराज है करीमल नवाज है हरी फल सिकान है रास लबकान है कलंक प्रणास है समातुल निवास है गंजल गनी मैर जय करीम है समातुल जवाह है के साहब किराय के नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है के नरकंग प्रणास है बैसतुल निवास है के सर्वल गवन है मेसुंदर वन है दुआमल तमी तमाम तमीज है समाज तला जीज है परम परमेश है समाज तला दी सारी सला लेखा है मीसल लेखा जमी जवा है मी कुल वाह करीम कुमार है कि अचल प्रकाश है कि मैं दुसवास है कि अजब जरूरी कि अजब स्वरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग नंग है कि मैं तो अपंग है मद पार छंद तक प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर गांजु हर न पर पांजु अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांडु भर नर मांडु अन पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जे अंग आसन पांग उपमा पार गात्मित उधार जल थल मांडो दिस विष पांडु जल थल महंत दिस विष बेअंत अनपवन आशुत्रत तरत्रन बाह एक ओंकार आदि कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरभर कालु कर कर प्रणाम जरण नाम
अनुसजगात आज जन बात अंजंज गात अंतरंज बात अंटुट भंडार अंठट पार अडीठ धर्म अतडीठ कर्म अणब्रणनंत दम हंत हार बोल मना छंद दव प्रसाद करुणालय है अर कल्या है खलखंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भारण है कृत के तरण है जग के करण है मन मन है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से हैं खलखंड से हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजप अजप अदप अदप हैं अकृत अकृत अमृत अमृत हैं अमृत अमृत हैं करुणा कृत है अकृत अकृत धरणी धृत हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृत अकृत अमृत अमृत हैं अजप अकृत अमृत अमृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वं पर हैं करुणालय हैं निरपनायक है सर्वपायक है पव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने

छत्र चक्र भरती छत्र चक्र भुगते सुयम पव सुगम सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विपुते।

पातशाही दसवीं कबिल बाज बिनती चौ पई हमरी करो हाथ धर रक्षा पूर्ण हो जित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत बार हमरे दोष्ट सब तुम का बहु आप हाथ दे मोहि बचाव सुखी वसे मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैर नकवाल सिंगरे आए पूर्ण हो मारी आसा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न ध्याऊं जो वर जाऊ सुदम दे पाऊं सेवक सिख मारे धारी है जन चंद्र मारे मारी आए आप हाथ दे मुझे भरे आए।

मूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेवो, निरंकार का चिंतन है पैवो। आप अपनी बुद्ध है चेती, वर्णत पिन पिन दोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूस रूपा, रंग पयो राव कहीं भूपा। अंड जजे रज से तज किन्नी, उत्पज खान बहोर रच दीनी। कहूं भूल राजा व बैठा, कहूं सिमट पयो संग्रह कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव, आदि जुगाद स्वरूप सुजम पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संग्रो। दुष्ट जिते उठ वो दुष पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तो तव सरणी परे, जिनके दुष्ट दुख तव मरे। वर्ष अनुभव मरे तिहारी, जिनके तुम संकट सब डारी।

बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकुर संत हरदास जीओ पिंड सब तेरी दास। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

जाके को जाका सिमरण मुख उज्जलारे काम कर प्रभ के सेवक प्रभु आप सवारे शरण नानक तन सद बलहारे।

शरण नानक तिन सद बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अग्रकरणी कृतवासी है, पहले खा कर समझाया खाओ न हो भी पाऊंगी। हूं सुने क्या रू आया, मन अंधा जन्म गवाया।

मन संतोष उपजै। दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जरा तय कुड़ियर बार एक हुंदा खाए चल है ऐठाओ तिना भिकाई कार जल खलिया पुनिया लोवा आकर जाने बिना नानक भगता पुख चला सतना में आजाद सदा आनंद रहे।

0: मूर्ख कछु न जाना पावे परो जन नानक हर हर दास पनहारो नानक हर कादा
1: श्लोक महला पहला सत्काल पूर्व त्याग कल काल बेटा बियो बीज पक

0: कर जुग्रत अगन का
1: मल्ला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सकने अच्छे साथ रहे सब तो सच मावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसू नाय ले प्राश्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहि जग में जोर चली चंद्रा बलकान दादम दया हर जाट को भी ले आया चंद्रा बन के रंगिया बल में वेद हर बन हुआ ना खुदाई अनुभया बदर ने कपड़े पह

जग गंदी सतवत जनील जी का है ना पांडे कत ना ये टुटे ना मल लग गए ना ये हो जले ना जाए तन सो मानस ना निकला जो गल चले पाए। डॉक्टर मुल बनाया।

लख दिया पहना मिया रात नाल तद बाहुन पतिए बमण वटे आए को बकरार इन खाया सबको अखे पाए कोई प्राणा सुटिए।

महला पहला ये मुहत का कर्म है कर्मत त्रिदे अगे बस आनी है चौतरे बड़ी हथ लाल कहे मुझे करे नानक अगे सो मिले।

0: जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होय, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जते दायन के जिया बाग न कोय, पहला पानी जियो है जितारे सब कोय, सूत क्यों कद पिए सूत पवित्र सोय, नानक सूत के न उतरे ज्ञान तारे को।
1: मल्ला पहला मन का सुख लोभ है जेवा सत को, अखी सुख देखना पर त्रिया पर।

पहला सुच्चा आप हुए सुच्चे बैठा आए सुच्चे गिर क्यों कोई न पिटियो जाए सुच्चा होए के जीविया लगा पढ़न सलोक पहुंची जाय सत्या किसे लगा धोक अन्न देवता पानी देवता दसंतर देवता लूण

इतना तय कौआ हंस हो। गुरु सतगुर पुरख अमृत सर बट भागी नावे उन जन्म जन्म की मल उतर निर्मल।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जितले खसमे पाए हुरमत खसमो अगली हो जो पैजुड़ा खाए खसमे करे बराबरी फिर कार पाए वजो गो आए अगला।

नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर समर सुख पावो, कल क्लेश तन मह मिटावो। सिमरो जास संभरे, कै नाम देवता गण काने कै। वीर पुराण सिमर सुध अखर, किन्ने राम नाम प्याखर। किनका एक जस जी बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवै। साखी एक दस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत सब नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु का सिमरन गर्व न बसै, प्रभु का सिमरन दुख जम नसै। प्रभु का सिमरन काल पर हरै, प्रभु का सिमरन दुश्मन तरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु का सिमरन अन दिन जागै। प्रभु का सिमरन भाव न व्यापै, प्रभु का सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन सार कै संग, सबने धान नानक हर रंग। प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध।

है हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परमंगत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत पार पुराही। अनक बिघन जह आए संहार, हर का नाम तत्काल उधार। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कहो न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जिह मार के गिन जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जह पेंड महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न सिंहानू, हर का नाम तह नाल पहचानू। जह महाभयान तप्त पौ काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर श्याम। जहाँ त्रिखा मन तुझिया करखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर अवसर साध कुमात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरध विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहिं वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजा हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को आप रब दीना। हर हर जन कै ओत सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग कीते तरे। पार जाते हो हर को नाम, काम तीन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्द सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम से आई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेके सर्व संढोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म क्रम क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना। शीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करै बहु भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौखंड पृथ्वी फिरै।

निमुख निमुख का सिर कटावे तो पी हों मैं मैल न जावे। हर के नाम सम सरकश नाही नानक गुरमुख नाम जपत कत पाही। मन कामना तीत देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न

बहुत से आणप जम का भव व्याप अनक रत्न का त्रिशन्ना त्राप एकानेक अगन नहीं बुझय कोटो पाव दर्जा नहीं सिजय छूटस नाही उब पय आल मोहे व्याप माया जाल अवर का तुर सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक।

सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग मतमल हे या सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस।

हाँ विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे न कीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह पीतर व

पूछा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुमसे हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गतमर तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक दीन हार प्रभ छोड़ कर लग है आन सो आए नानक कहूँ न सी जई बिन्ना मैं पत जाए अष्टपदी।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन को टंब सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असल वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्द को।

मिथ्या तन्हि परि उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय। मिथ्या साकत की आज्ञा साज बिना कह होवत सूचा बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरसा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरसे सब काम ज्यो किरपन के निरारस धाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कच अवर कमावत।

जिहे प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जिहे प्रसाद को ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जिहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जिहे प्रसाद आपूखण पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिहे प्रसाद असवहत असवारी मन तिस प्रभ को गभू ना बिसारी जिहे प्रसाद बाग मिलख धना राख तोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सब तिसै त्याई तिसै त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जिहे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ

जिहि प्रसाद सुनै कन्नाद, जिहि प्रसाद चेखें विस्माद, जिहि प्रसाद बोलह अमृत रसना, जिहि प्रसाद सुर सहते बसना, जिहि प्रसाद हस्त का चल है, जिहि प्रसाद संपूर्ण फल है, जिहि प्रसाद परम गत पाव है, जिहि प्रसाद सुर सह समाव है, ऐसा प्रभु त्याग और कत लागू, गुरु प्रसाद नानक मन जागो।

प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कृष्णा किन्हू लिया। जित जित लाभ तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछुना हाथ। लोक अगमगार पार ब्रह्म सोए, जो जो कह समुगता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, सार्जना की अचरज कथा अष्टपदी। साधक संगमुख उजल होत, साध संगम सगली कोत। साधक संगम टै अभिमान, साधक संग प्रगटै सो ज्ञान। साधक संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबीरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साधकी महिमा बनै कौन प्राणी, नानक साधकी शोभा प्रभु माहि समानी। साधक संग गोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग मुतरस पुंचा। साध संग हुए सब की रीण, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतम उतावै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस क्यों नहीं बैर, साधक संग न बीगा पैर। साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही हो ताप, साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साधक संग न कबहू तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्तर गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साधक संग बसै स्थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधारै, साधु संग साजन मीर कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस संत सबको वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सो देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साधु संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्वथान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुखत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई।

गुण गाओ। सारक संग न मन ते बिसरै, साधु संग सर पर निस्तरै। सारक संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा। साधु संग पय आज्ञाकारी, साधु संगत पई हमारी। सारक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संयोग। सार की महिमा वेद न जान, जेता सुनह तेता बख्यान है।

ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंच

नीति नाम। ब्रह्म ज्ञानी के सब उपरमया, ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सौंदर्य, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मोता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही संधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी क्या होए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सदजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाए अध्यक्ष, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टा करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

संगत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते बिंत सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म। सार संग पापा मल कोवे तिस भगवती कीमत उत्तम हुए। भगवंत की टैल करे नित नीत मंतन अर्प विष्णु प्रीत। हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। हो पंडित जो मन प्रभु दे राम नाम आत्म में शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण समेत बूझे मूल सूखम मैं जाने असूल। चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा मैं जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए साल संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उधार है पत प्रेत मुक्त पासर कौतार है। सर्व रूप का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू ज्योत के दना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार भ्रम का निवास जिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तुख नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दर है प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। रब की आज्ञा आत्म हित आवे जीवन मुक्त सूख कहावे। तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान। जुगत साए साए जुगत।

पसरियो आप होय अनत रंग लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक पुस्तक करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के सोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार हैं कई कोट कब का विचार हैं कई कोट नव तन नाम त्याव नानक करते का अंत न पाव हैं कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरें कई कोट पर रूप न करें कई कोट माया श्रम माए कई कोट पर देश श्रम आए जित जित लाभ हो चित चित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश को मंडल कई कोट सत्य सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थास कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीवे कई कोट जख्य किन्नर पे साच कई कोट भूत पेतु कर मृगाच सबसे नेरा सब होते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काल है सक पाहे कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जय पाना तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लेव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अवनास कई कोट मांग है सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खाणी अखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की ने बहु भांत सबत होए प्रभु महे समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्री कई कोट नाम रस पीव हैं

परमेश्वर के प्यारे श्लोक। कर्ण कर्ण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी। कर्ण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होग, तिनमें तापो तापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी उडियाई नानक सब मह रहया समाई। प्रभ भावै मानुक कर पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सासे राखै प्रभ भावै ता हर गुण पाखै। प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै आपन विचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी केलै बिकसै अंतर।

अनजानत बिकिया मैं रचै, जे जानत आपने आप बचै। पर मैं भूला दैद सावै, निमुख माहे चार कुंट फिरे आवै। हर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। किन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दैद प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा ना गणै जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई।

संग जोत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु का सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्तकीनिया आपने वातले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै बो जोन परमावे तन पूर्ण का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हो कर गर्भावे तृण समान कर संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस फल पीतर ताका होए विनाश सबसे आवजा न बलवंत किन मैं होए जाए पसमंत किसना बदा आप अहंकारी धर्म राय तुस करे खुआरी गुर प्रसादा का मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो सारे संपावे सगले बिरसारे अनकत बसया करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह को कैसी गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाए निकट न आवै सर्व की रेंजा कामन होए ओ नानक ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझसे कछ हुए तब इसको सुख नाही कोई जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर नाही पीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए तब कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै सहस कटेलह को उठतावे तृप्त न आवे माया पाचै पावे अनक भोग बिछिया की करे न तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सपन मनोरथ बिरसे सब काजै नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भागी किसे प्राप्त हुए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार जिसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभु सोए जो किसी किन्नो सो अपने रंग सबसे दूर सब हूँ कै संग बूझे देखे करै विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिनता आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझाए आपे रचिया सब कै साथ आप किन्नो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उससे पिन कहो किस हुए।

असबरी संत का दुखन आर जा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हते कौर कहना कोय, संत का दुखन स्थान प्रकट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच ने चाए, संत दुखी का काम को नाही, नानक संत भावै तो ए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिण टिकन

संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बेजोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोक्ष। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी कौ डाण लागे, संत के दुखी कौ सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा

मंतन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, चित उत की ओह सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद।

एक ऊपर जिस गन की आशा, जिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसैन लाग है दूख। जिसको हर पव मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किससे डरै। जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। न किस जन्म है न

अनक जोत रच साप ओ साप अबनासी नाही किछ खंड सारण सार रहियो ब्रह्मंड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए

पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तुसै चितार। जो कज करे सोई सुखमान, तूला काहे सरै अजान। कौन बस आई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत के ती कर जा।

जप नानक प्रभु अलख विदानी। बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत हो मन तंत्र भिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किस अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जनते बताने, मन तन नाम है नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सज काम। बोलो जस जे वह दिन रात, सब अपने जन कीनी दात। कहे भगत आत्म कह चाए, सब अपने चो रहे समाए। जो हो आओ वसो जाने, सब अपने का हुक्म पछाने। जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो।

जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व सुख का दाता, जिसकी शरण सर्व सुख पाव है, जिसका दस सब पाप मिटाव है, अवर सियान पुतगली शाड, जिस जन की तू सेवा लाग, आमन जान न होवे तेरा, नानक किस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जाने सदगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सदगुर सिखी करै पत पाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिखी गुरु मत मल हिरै, गुरु बचनी हर नाम उचरै, सदगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार से हटै, सदगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सदगुर सिख का हरत फल सुतवारै, नानक सदगुर सिख को जी नाल संवारै, गुर का गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मह सहै, आपस

सेवा करत हुए ने कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, तो सतगुर जिस हर नाऊ, अनक बार गुर।

कीमत कनै न पाई, अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है, सदबलिहारी सदगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हरस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सोहोए, उस पुरख का नाही करे विनाश, जाके मन पर टे।

सगल ब्याज मन ते खै नसे जिसका साधन कृपा तारी साधु संग जप नाम मुरारी चित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आवसा गुण भी ओही कला धार गुण सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर दिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए पोत पोत रवे आरूप रंग भय प्रगास सार कै संग रचरचना अपनी कलधारी अनक वार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक हो धन सार अष्टपदी संत जन नाम करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पालसा मीत विसारो चरण कमल मह उधारो करण कान सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत जो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा कह मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ धावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को निर्वांछ मीत तो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को कह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हरे औखद लाए सब निदान में हर नाम निदान जप नानक दर्ग है प्रवान मन पर बोध हो हर कह नाए जैद सताव ते आवे खाए ताको बिघन न लागे कोय चाका हृदय बस हर सोए कल तापी ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसै बनासी कहो नानक काटी जम फासी सत विचार

उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनको पाम न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचक नानक फल पाए, संग न चाल तेरे तना, तू चाल बटाव है मूर्ख मना, सुत मीर को टंब अर बनिता, हिंते कहो तुम कमन सनाता, राज रंग माया विसार, हिंते कहो कमन चुटकार, अस हसी रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे नाम बेगाना, नाम विसार नानक पहचाना, गुर की मत तूले ए आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम अहरो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूप सत हर को नाओ, चाहे सुभाए नानक गुण गाओ तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बिसु फैल, ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्राह हर नाम संभाल, चाड सयानप सगली मना, साध संग पावै सत धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गह जयकार, सब निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख, एको जप एको सा लाहे, एक सिमर एको मन आहे।

एक आराध पराशत गए, मंथन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभ आया, भरिया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए अशबदी, जाचक जन जाच प्रभ दान, हर कृपा दे वो हर नाम, साधजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर।

सर्व समाये प्रभ भक्त छंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कथा कर्त

अष्टपदी। जब आकार एक अटना दृष्टि था, पाप कुण तब कहते होता। जब धारी आपन कुण समाध, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वरण कह ना जापत, तब हरक सोग को कसै व्यापत। जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन केल आप वर्तीजा, नानक करना हा ना लूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सवाए, तब शिव सगत कहो कित छाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निडर कवन खत डरे। आपन चलित आप कर नहार, नानक ठाकुर अगम अपार। अब नासी सुख आपने आसन, तै जन्म मरण को कहा बिनासन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत ओ चिर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नंजना गोचर आगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही है चर्जा, नानक आपन रूप आप ही हो प्रजा। यह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, कह बिन मैल कहो क्या तोता। यह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। यह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस। यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसह भूख कमन त्रिपतावे। कर्ण कराम करन हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाब मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद देव कहाँ को चीन। जब आपन आप

हार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान आपन के लाप कर दे संकोचे तो नानक एक है। जह अवगत भगत तह आप जह पसर पासार संत प्रताप धू पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतक कर अनद चोज आप है रस भोग निर्जोग जिस पावे तुझे आपन नाए लावे जिन पावे तिन खेल खिलावे बेशुमार अथाह अगणित अतुल जो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वचन हार नानक एको बसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जत पावे ता शिष्ट उपाय अपने भाने लय समाये तुमसे भिन्न नहीं किस होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए तो समुन्दर सी तरचा बेता नानक सगल शिष्ट का जेता जी जंत्र सब सा कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोई न मारे तो मूहा जिस मनो विसारे जिस तज अवर कहाँ को जाए सबसे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानहु साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार।

अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का यह सो आओ। आठ पहर का पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनते अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परी।

बुरा फौरा कहो कि न कछ करा। आप भला करतु ते अपनी की आपे जाने अपने जी की। आप साज सारी सब साच ओत पोत अपन संग राच। ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर होए तो सोची पाए। जिसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नानक इहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए। हो धनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सब जगत कराया।

कर कृपा प्रव्याम मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन को प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण हुए सेवक की सेव साजन जाल बिकाते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रवताए नानक निभी केप हमारी सबकि उस्तद करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सैर गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा का की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबसे ऊच पाए स्थान भौर न होवे आवन जान हसन खात चलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए सेम सांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध सगल दे उदास सुंदर चतुर सत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ये फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहु निदान जपै मन कोय सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम सुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साल संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रपाए साध सन नानक ते आए जिस मन बसै

और समाता हो चुका है, पर संतां वालों हुक्म होया है कि दे सिवा बरमोए एह शुभ कर्मन से कबहू ना डरो, ये शब्द गायन करना है। सो आओ आप संतां दे हुक्म नू मनदे होए एक दो मिनट विच ये शब्द संपूर्ण करांगे। कृपा करनी सारे ने रल मिलके शब्द इस खास जी पढ़ना चाहिए।

0: गुरु प्यारे सत्संग जी ने इतनी खासियां प्रदान करना जी, कीर्तन करदियां हुई बेअंत फुला खिमा करना जी, असीस बख्शिश करना गुरु पातशाह रहमत करन, साडे सारिया का गाव्या साडा सुनिया साडे हिरदे वास्ते आवे। सो इतनी खासियां प्रवान करना जीओ, कोटान कोट धनवाद तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्हों की बाणी की सांझ सदका आप संगतां की सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया। इस अस्थान के प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय समय आप संगतां की सेवा लई हुक्म करते हैं, आप जी की कीर्तन राही सेवा करन लई आप जी के हुक्म सदका हाजिर होईदा। हुई भुलां चुकां की खिमा बख्शना जीओ, आओ फतेह की सांझ करना, फतेह का जवाब गज वज के फतेह देना जी।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

मैं तेरे जीवन नूं अथे सचखंड बना देना चाहूंगा। तेनू रब ढूंढने लिए किसी फतवे आसमान

तेरी की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहे विश्राम, पाप खंडन प्रभु तेरो नाम। तू अगणित जीव का दाता, जिस जनावै तिन तू जाता। जो अपायो तिस तेरी आस, सगल राधै प्रभु गुण दास। नानक दास तेरा कुरबान, बेअंत साहिब तेरा मेहरवान, मेरा मेहरवान। बेअंत साहिब मेरा मेहरवान, राम कली महला पंजवा। राखन हार दयाल, कोट पव खंडे निमख खयाल। सगल आराध्य जंत, मिलिए प्रभु गुर मिल मंत। जीवन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी। घट घट राखा मेरा प्रभ राव, ताकि गही मन ओटा। बंधन ते होई छोटा, हृदय का जापो परमानंद। मन माही पई आनंद, तारण तारण हर शरण। जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार। ऊचे ते ऊच पार, सो मत सार जित हर सिमरी जाय। कर कृपा जिसे आपे दी जाय, सुख सहज आनंद हर नाउ। नानक जपिया गुरमिल नाउ, राम कली महला पंजवा। सगल सयान पछाड़, कर सेवा सेवक साज। अपना आप सगल मिटाई, मन चिंदे से ही फल पाई। हो सावधान अपने गुर स्याऊ, आसा मनसा पूर्ण होवै। पावे सगल निदान गुर स्याऊ राउ, दूजा नहीं जाने कोई। सतगुर निरंजन सोई, मानुख का कर रूप न जानू। मिली न माने मान, गुर की हर चर टेक टिकाई। अवर आसा सब लाही, हर का नाम माग निदान। तां दरगह पावे मान, गुर का बचन जप मंत। एका एहा भगत सार तत, सतगुर भई दयाल। नानक दास निहाल, राम कली महला पंजवा। होवै सोई पलमान, अपना ताज अभिमान। दिन रैन सदा गुण गाओ, पूर्ण ही सुआऊ। आनंद हकार संत हर जाप, छाड़ सियानप बहु चतराई। गुर का जापन मंत निर्मल रहाऊ। एक की कर आस पीतर, निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार, पवजल त्रो पार।

निर्मल नाम जो जपै तिस की गत होए नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलभ देहि सवार जाहि न दरगहार हालत पालत तुद होए वड्याई अंत की बेला लय छडाई हर के गुण गाओ हालत पालत होए दुवें सुहेलै आचार्य पुरख ते आऊं रहाऊ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवै मीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम ए कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदारू जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवै आस जम की घटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनी जय नानक सुख सहज समी जय राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाही गुमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसे अराज सदा सुख होए काही ब्रह्म ब्रह्मै बिगाने नाम बिना किस काम न आवै मेरा मेरा कार बहुत पछताने राउ जो जो करै सोई मान ले नाम बिन माने रल होवै खेहे तिसका पाणा लागै मीठा गुर प्रसाद बिरले मन बूठा वे प्रवाह गोचर आप आठ पहर मन तां को जाप जिस जित आए बिनसै दुखा हलत बलत तेरा उजल मुखा कौन कौन उदरे गुण गाए गणन न जाई कीम न पाए बूढ़त लोह साध संग तरै नानक जिसै प्राप्त करै राम कली महला पंजवा मन मह जाप भगवंत गुरपूरै दीनो मंत मिटै सगल पै परम पूर्ण होई आस मिटै सगल पै त्रास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किछ कहन न जाई सच आए साचा लख पेवा राउ करन करावन आप तिस कौ सदा मन जाप तिस की सेवा करनी तो सच सहज सुख पावे।